एक करूं विनंतिया तिस मोहन लाल प्यारे, हम फेरों खोजंतिया तिस दस प्यारे सिर तरी उतारे।

करते रह। साचा नाम मेरा अंधारो, सच नाम धार मेरा, जन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मनाय वसया। जिन ऐसा सपो जाइया, सदा कुरबान किता गुर बेटो, इसनिया बुढ़ियाइया, कह नानक सुनो संतो। सौतरो प्यारो, साचा नाम मेरा धारो, वाजे पंच शब्द कर स्पागै।

तोर कर्म पाया तुझको सिनाम हर के लागे कह नान ते सुख आतित करण हदवाजे आनंद सुनो बट भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसोरे दुख रोग संताप उतरे।

हाँ कोली जियो कोर कमाई तेस सच्चे गुर दरबारे जियो सो कहो टल गुर सिविया एहन सो सहज सो पाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठे हाँ सोही है सबना दा बेसाहू।

0: को भोग जोग हर नाम जपत कस नाहे वियोग
1: दाता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा
0: हर जन के माल खजीना हर धन जन को आप प्रभ दीना
1: हर जन की ओर सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी
0: पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते
1: जन हर हर जपे हर का भगत प्रगट।

0: ब्रह्म सुमनि
1: साध के संग अगोचर मिले साध के संग सदा पर फूले
0: साध के संग आवे पंचा सा संग अमृत रस पुंचा
1: साध संग वे सब की रेन साध के संग मनोहर बैन
0: साध के संग नाकत हूँ।

0: कल राख बसम कर लस्कर कोट लाख
1: जिसका शासन कट देहा को रख देख रहा थे
0: जतन करत बहु भात तिसके कर्तव्य थे
1: जा मारे न रखे वरना कोई सर्व जिया का रखा सोए
0: सोच कर रे प्राणी जप नानक

0: जन कोए अमृत पीवे अमृत सो होए
1: उस पुर का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुणता
0: अठर हर का नाम ले सच वदे सेवक को दे
1: माया के संग न ले मन में रखे हर हरे
0: अंधकार दीपक परगासे नानक भ्रमो दुख तैते नासे
1: माए ठाड़ वरताई।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद

आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले किती छुटी नाल जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले किती छुटी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तू सदा कुर्बानी।

कर्ता पुरुष हो, निरपो निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुरप्रसाद, तो दया गए अरदास हमारी।

विचार जगत पिता है सर्व प्राण को आधार जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखाना हां कै बल बल बल बल सद बलिहार।

जन्म मरण दुख जाए होवे सिपत खसाम दी नूर अरसों कुरसों चटी है तुद डिठे सचे पात शाह मल जन्म जन्म दी कटी है सजन सचा पात शाह सिर शाह दे शाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाह जिस पास बैठिया सोही है

पांडा तोए बैस धूप देवहो तो दूध कौ जावहो दूध कर्म फोन सुरत समायणा